कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: पूरा प्रताप पुरंदर सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज अश्वपति गजपति भूपति गो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति श्री श्री श्री शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। आपण ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM आणि मी आहे आपला मित्र आरजे संजय।
1: हमारे अगले लघु कथाकार है सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी, जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित कवि, लघु कथाकार एवं व्यंगकार है। इन्होंने कविता, लघु कथा और व्यंग साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हुए अनेक चर्चित कृतियां प्रदान की है, जिनमें खुशियों का डेरा, हाथी के दांत, मतलब अपना साथ रे बंदे तथा परदेसी या प्रमुख है। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए उन्हें देश की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा अनेक राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वे भारतीय रेल से वरिष्ठ तकनीशियन पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी निरंतर साहित्य सृजन एवं हिंदी सेवा में सक्रिय है। मैं सतीश जी को मंच पर अपनी लघु कथा के लिए आमंत्रित करती हूँ।
2: सम्मानीय मंच और आप सभी की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। चेतना के नवीन स्वर के तहत ये लघु कथा, शीर्षक है गुरु दक्षिणा। खट खट खट, गुरु ओ गुरु। अंदर से कोई जवाब ना पाकर वह अपने आप में भरभराया, लगता है जल्दी सो गया, बुढ़ापा है ना, थक गया होएगा। अच्छा एक बार और खटखटाता हूँ, खट खट गुरु। अब कि उसने कुंडी खटखटाने के साथ एक लंबी आवाज भी लगाई, आता हूँ भाई, ये खाली पीली अपन को कौन पूछने वाला आ गया। कहते हुए उसने दरवाजा खोला ही था कि सामने कलुआ को देख आश्चर्य से मुस्कुराते हुए बोला, इस समय तू यहाँ? हाँ गुरु, बहुत दिन हो गए तुम्हारा अपन के सर पर हाथ रखे, सो चला आया। कहते हुए कलुआ पूरी श्रद्धा के साथ गुरु के पैरों में झुक गया। ओए उठना, अपन का आशीर्वाद तो हमेशा ही तेरे साथ है, और बता कैसा चल रहा है तेरा धंधा पानी, किसी लफड़े में तो नहीं फंसा? बिल्कुल भी नहीं, जिसका उस्ताद तुम जैसा हो उसका तो कोई लफड़ा हो ही नहीं सकता, सारा मस्का मार रहा है। गुरु ये मस्का नहीं, अपुन का हकीकत है। तुम नहीं होता तो ये जमाना अपुन से कहीं भीख मंगवा रहा होता, वो भी लंगड़ा लूला या अंधा बहरा बना के। अच्छा सुन, ये टाइम इमोशन का नहीं, चल जा अपनी खोली में, बाकी बातें बाद में। क्या ठीक है गुरु, तुम जैसा बोलो। लो ये थोड़ा रोहड़ा रख लो, आज अपुन ने तगड़ा हाथ मारा है। कहते हुए कलुआ ने मुट्ठी में दबे कुछ नोट गुरु की तरफ बढ़ाए। ये तू अपने पास ही रख, अपुन का खर्चा ही क्या है, गुरु ने अपने पन से कहा। ऐसा कैसे, गुरु से मिलने के बाद दक्षिणा तो बनता है ना। देख तू दक्षिणा देना चाहता है ना, तो एक काम कर, अब ये सब काम छोड़ और कोई ईमानदारी वाला, मेहनत वाला, सुकून वाला काम पकड़। ये पॉकेट मारी बहुत हुआ साला, अपुन पॉकेट मारी में पैसा नहीं, लोगों का हाय कमाते हैं, दर्द लेते हैं दर्द, मगर अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही चपुन का गुरु दक्षिणा है, वो देता है। अचानक उस्ताद के बदलते रूप को देख कलुआ आश्चर्य से गुरु के कदमों में झुकता चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जिनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी वह है नरेंद्र कौर छाबड़ा जी। आपकी अब तक देश की लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित है, 40 वर्षों से नियमित लेखन जारी, 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, केंद्रीय निदेशालय महाराष्ट्र साहित्य अकादमी समेत लेखन के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 2 लघु कथाएं भी समाविष्ट है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नरेंद्र कौर छाबड़ा जी।
1: मंच पर आज से विद्वान साहित्यकार और सभी मेरे साहित्यकार साथियों, आपके समक्ष जो लघु कथा सुना रही हूँ उसका शीर्षक है अपना काम करती रहो। आज उसे ICU से निकालकर प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। पति के साथ ही दोनों बच्चे भी वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। कमरे में अपने परिवार को देख उसके मन में गहरे संतोष के भाव उभर आए। कुछ देर बाद बच्चे घर चले गए तो वह पति से धीरे से बोली, कल मैंने कविता लिखी। पति हैरानी से बोले, ICU में तुमने कविता कैसे लिख ली? पत्नी ने कहा, आपने ही तो मुझसे कहा था बीमारी को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करती रहो। बहुत चिंतन मनन चल रहा था। मैंने नर्स से कहा तो उसने अपने मोबाइल में मेरी कविता रिकॉर्ड कर ली, फिर मेरे मोबाइल में भेज दी, देखिए मेरे मोबाइल में ही होगी। पति ने बड़ी उत्सुकता से जेब में से पत्नी का मोबाइल निकाला, कविता का ऑडियो साफ नजर आ रहा था। चलो सुनते हैं, कहकर उसने ऑडियो ऑन किया। बहुत संवेदनशील कविता थी और अंत में पति के प्रति कृतज्ञता भी जाहिर की गई थी। पति ने उसके हाथ पकड़कर चूम लिए, मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हारी हिम्मत पर, तुम्हारी योग्यता पर, कला पर और मुझे आपके सहयोग प्रेरणा पर। पत्नी भी होले से मुस्कुराती, बेशक चेहरे पर दर्द भी साफ नजर आ रहा था। चलो अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, केवल 4 कीमो लेने होंगे। पति के कहते ही वह फौरन कह उठी, अब मुझे किसी बीमारी का डर नहीं, जिसे आना है आए, मैं तो अपना काम करती रहूंगी, आपने कहा था ना। फिर दोनों ही मुस्कुरा दिए। पत्नी की आंखों में गजब का आत्मविश्वास दृढ़ता नजर आने लगी थी।

हमारे अगले लघु कथाकार है डॉक्टर सुनीता शिरगांवकर। आप साहित्य, संगीत एवं रंगमंच से जुड़ी बहुआयामी प्रतिभा की धनी हैं। आपने बरकत उल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से छायावादी कवियों के गीतों का सांगीतिक दृष्टि से अध्ययन विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। हिंदी एवं मराठी साहित्य, कविता, बाल कथा लेखन तथा रंगमंच अभिनय में इनकी विशेष रुचि रही है। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में प्रकाशित हो चुकी है तथा वे साहित्यिक और इनका योगदान उल्लेखनीय है। सो आमंत्रित है डॉक्टर सुनीता जी। सभी सभागृह में उपस्थित श्रोताओं को भी मेरा सादर नमन। अपनी प्रस्तुति के पहले मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ और क्षमा मांगना चाहती हूँ। आप मुझे नहीं, मैं बता, लघु कथा लेखन की जब शुरुआत की ना, एक मन में विचार आया, पर वो लघु कथा न कहकर कहानी बनती चली गई और मेरे मन को इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा चलो इस बार लघु कथा नहीं लघु कहानी सुनाती हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सर कहेंगे कि लघु कथा कहाँ था बोलने के लिए, आप तो कहानी लेके बैठ गई। कहानी का शीर्षक है दूसरा विकल्प। वो आज फिर सीढ़ियों पर बैठी तमाकू मिल गई थी, नाम था सरिता। मैं स्कूल से लौटी तो वो मुझे देखकर सहम गई। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि लगा उसे जोर से काटूं, लेकिन पुनः उसका सुस्त और मान चेहरा देखकर मैं चुप रही। वह अनुनय विनय करते बोली, मुझे काम पर ले लीजिए ना, मुझे काम पर ले लीजिए ना। मैं उसको पहले ही काम से हटा चुकी थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी सहानुभूति अर्जित कर ली और मैं बिगड़ जाती। लेकिन आज उसका चेहरा कुछ अलग से ही दमक रहा था। चेहरा हल्के मेकअप से सजा था, बालों में गजरा, हाथों में भरी भरी चूड़ियां, कानों में लटकते कुंडल, हल्के गुलाबी रंग की साड़ी, पांव में पायल। देख मैंने उसे पूछा, कहाँ गई थी, किस शादी में गई थी? वो बोली, नहीं तो, फिर ये सजदस ये क्या है? मैंने पूछा, ये क्या है सजदस, क्यों है? तुम्हारा पति भी साथ गया था? वो मर गया। उसका गुस्सा गुस्से से चेहरा कंपना गया। वो तो मर गया। मर गया? मैंने आसिफ से भरी आंखों से उसके बालों में हवा से झूलती बेनी की तरफ देखा और कहा, वो फूल हवा से सूखकर पीले हो चुके थे। अब मैं क्या पूछूं? कोई भी सवाल करना अब मेरे लिए ना सवाल। कुछ क्षणों के लिए मैं पिछले समय में गुजरी उसकी रुदर व्यवस्था व्यथा को देखकर मन ही मन घबराने लगी। उसका बेटा शराब और जुए के व्यसन में लिप्त था, बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन उसे पुराने कपड़ों की उतरन बिल्कुल नहीं खाती थी। फोन भी जरूरी था, माँ की कमाई लूटती खसोटती और अपने शौक में लगती। बेटा घर के सामान को कलाली के हवाले कर चुका और अब तो उसने धक्के मारकर सिकता को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया। सरिता तीन दशा की माँ भी बिचारी, लेकिन देखने में बहुत अच्छी थी और सुदृढ़ देह स्थिति की धनी थी। उसका पति हर बार नौकरी के बहाने घर छोड़ जाता और पैसा उड़ा कर खा लिया लौटता। मांगना पीटना तो उसकी सर्वधर्मिता का अंग बन चुका था। सरिता का देवर प्रकाश उसकी दुर्दशा से बहुत दुखी था। कई बार वो उसे खिन्न मना देखकर सांस लेने का प्रस्ताव दे चुका था, लेकिन वो सभी सवाल सावित्री पति और परिवार समाज का डर ये सब बताकर चुप रहे। लेकिन इस बार प्रकाश उसे सड़क से उठाकर घर ले आया। वो काम करता, अच्छा कमाता, शादीशुदा न होने का उसे भी घर में एक स्त्री की जरूरत थी। वो सोचता, सरिता क्या बुरी है, एक स्त्री है, देखने में अच्छी है, उसे भी इस स्त्री की जरूरत है। वो सोचता, सरिता तो अच्छी है, थोड़ी सी सादी सीधी मंद बुद्धि है। सरिता का यह गुण प्रकाश के लिए पर्याप्त था। कुछ लोगों में इस प्रकार की संस्कृति का चलन बहुतायत से होता ही है। धीरे धीरे समझाने पर सरिता ने प्रकाश का प्रस्ताव स्वीकार किया। उसके जीवन में इसके सिवा दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।

0: Pemuda Qatar, डॉक्टर ममता झा जी, आप पिछले 26 सालों से नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के कनिष्ठ विभाग में कार्यरत है, बोर्ड ऑफ स्टडीज महाराष्ट्र के मेंबर है, संकल्प साहित्य कला मंच की स्थापना की एवं अपने 3 सखियों के संग मिलकर जिसके अंतर्गत पूरे महाराष्ट्र के हिंदी शिक्षकों को पाठ्यक्रम के लिए एक ट्रेनिंग प्रदान की और साहित्य और कला में रुचि रखने वाले शिक्षक मित्रों को मंच प्रदान करते रहे। पिछले 3 वर्षों से हिंदी सामना में मैथिली भाषा में हास्य व्यंग का कॉलम छपता है। साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद कार्य के लिए चयन। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर ममता झा जी।
1: धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और इतना सुंदर मौका प्रदान करने के लिए। मेरे लोककथा का शीर्षक है उत्सव। गौरी महादेव से आग्रह करती हैं, वसंत ऋतु में पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए चलिए। महादेव, जाने की क्या आवश्यकता है, यही से पूरा देख लीजिए। पर पत्नी के जिद के आगे महादेव हार गए। अस्तु दोनों अधीर दंपति का रूप धारण कर पृथ्वी पर एक बहुत बड़े जगमगाहट वाले स्थान पर प्रकट हुए, जिसे मानव मोर के नाम से संबोधित करता है। गौरी भीतर प्रवेश करने पर कहती है, आहा, यहाँ तो कैलाश पर्वत जैसे शीतलता है। महादेव, इसी शीतलता के प्रभाव से कैलाश की शीतलता पर खतरा मंडरा रहा है। वहां की साज सज्जा देखकर गौरी विस्मित होते हुए महादेव से प्रश्न करती है, यह कौन सा उत्सव पृथ्वी पर मनाया जा रहा है जिसके लिए यहाँ पर लाल रंग के हृदय के आकार के की सज्जा हृदय के आकार की वस्तुओं की सज्जा की गई है। महादेव, जो पृथ्वी लोक के पति के कैरेक्टर में प्रवेश कर रहे थे, बोले, मुझे भी ठीक से पता नहीं। गौरी माता पर भी पृथ्वी लोक की पत्नी का प्रभाव पड़ चुका था। बोली, आपको सब पता है, बस मुझे बताना नहीं चाहते हैं। महादेव, यही अविश्वास की बात के कारण पृथ्वी पर सब झंझट हो रहा है, झूठ पर विश्वास भी कैसे हो। महादेव समझ गए, बिना जाने मानेगी नहीं। दोनों फूड कोर्ट पहुंचे, वहां चहल पहल के बीच एक नवयुवक अकेला चुपचाप बैठा हुआ दिखा। महादेव गौरी से कहते हैं, तुम यहाँ बैठो, मैं उस युवक से पूछकर आता हूँ। महादेव उस मानव से पूछते हैं, यह कौन सा उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। मानव, भांग खाए हैं क्या। महादेव, हाँ। मानव को लगा मजाक कर रहे हैं, बोला, आपके समय में इस उत्सव की इतनी मार्केटिंग नहीं होती थी, इसलिए आपको शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है। ऊपर से आप लोग पारिवारिक जिम्मेदारी उठाने वाले लोग, उस कारण से इस सब की तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही कहाँ थी। ये उत्सव 8 दिन का मनाया जाता है।

0: पहले दिन गुलाब देकर आरंभ किया जाता है और अंतिम दिन वस्तु भेंट करके समाप्ति की जाती है। महादेव, तो आप क्यों चुपचाप बैठे हैं यहाँ? मानव कुटिल मुस्कान के साथ, मैं इस उत्सव का आयोजक हूँ। महादेव सोचते हैं कि गौरी को इन सब की जानकारी प्राप्त हो उससे पहले उसे कैलाश पर्वत पर ले जाना बेहतर है।
1: श्रोते हो, हिंदी पत्रकारिता दिवस या निमित्त आपल्या स्नेहालयामध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय संगोष्ठी निमित्त अनेक लघुकथाकारांनी आपल्या लघुकथा सादर केल्या होत्या। त्या कार्यक्रमाचा संपादित वृत्तांत आपल्या रेडिओ नगर 90.4 FM वरून प्रसारित करण्यात आला। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: रेडियो नगर 90.4 FM आवाज तुमचा।
1: तुम्ही ऐकत आहात स्नेह वार्ता फक्त रेडियो नगर 90.4 FM वर।

हर पल जिंदगी का बस धुआं है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमसा।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

हर पल जिंदगी का बस धुआं है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमसा।

0: रेडियो नगर 90.4 FM आवाज तुमचा।
1: तुम्ही ऐकत आहात सांज रंग आरजे अनु सोबत।

दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

ना ना ना तछुम तछुम तक तिकदा तिकदा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित भंग था खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं

डाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।